0: अन्य तयो कागज के मे थिए वा
1: अ झिल्काई
0: के पर्सनल नम्बर ब्लक लै वदी
1: पर्सनल मोबाइल नम्बर मे उनी यो टेलिकमर बे अफिसर याई र ब्लक लै र खलखाई
0: अनि बैंगरी
1: बैंगरी
0: अ
1: सर चाहिँ तले लल्पर्दी
0: चमनल पति न आफै न मोबाइल नम्बर फेर दिया बदेर ब्लक तयाई दिशा आफै न बैंक दे बिनी जानकारी पिन परिम दे आफै न बैंक

0: रेडियो रेडियो दीदी बहिनी को समय सूचक हो।
1: अहिले बिहानको ठीक 8 बज्यो।

0: समी चाहो चौदह के में बोधे लोटी पर दी रो बैंक ने विवरण पी भी है मुई खाता लिखे हमरो
1: खाई खाई बहु कोई लोटरी बढ़ दिलवा
2: आंगी समी जो लोटरी पर दियो छानता ही गुदी
1: बढ़ दिया बढ़ दिवा लोटरी खाली पढ़ दिन बा सहेली मैसेज व्हाट्सएप फेसबुक वाइबर खाने बने खाई बिसा खाई मई विश्वास आनन फोन खाले पनी आप ही विवरण खाई मई आपिन खबर बने वित्तीय संस्थे के पासवर्ड पिन खाई मई आरी सुमी बैंक आप ही बने आरी
2: सिद्धार्थ बैंक क्या रे जन हेदरी जारी संदेश
3: सिद्धार्थ बैंक संबंध सदैव भरी लाई
4: ये बोल जोगा खोल दे जोगा खोल मैं यह सुनी नहीं
5: उफ आज अपनी माती राय सुन है ना कुत्ती ढोकलो सो क्या हल्ला बने
4: कुत्ती बेर लगाएगी जाबो ढोका खोलना पानी
5: है ना तो पहले अपने स्वास्थ्य को मेरो आई लाला वाला को अल्ली कती पनी ख्याल चाहिए ना जाइले पनी ये सारी रक्सी मात तो धोखेरा जीवन चलता आपने बहनी माँ कहाँ बाटे कहाँ पुगी सकी आपने बनी भाई को एक घर बार परी जाला बनने डर
6: धूमपान र मध्यपान जस्ता खराब आचरणहरू बाट टाढा रहूं सुखी अनि स्वस्थ जीवन बिताऊं
7: महाफिला गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिका को कार्यालय बालाकोट पर्वत
8: ल बर्बादी भयो नि यति सानो भुइँचालोले पनि अस्ति भर्खरै बनाएको घर भत्कियो तर तपाईँको त केही भएको छैन
9: विचार नपुर्याई घर बनाउँदा यस्तै हुन्छ मैले पहिले भने होइन ओम श्री दक्षिण महाकाली क्रसर उद्योगबाट सामान ल्याऊ भनेर भनेको मानिनौ म त अघि पछि पनि त्यहीँबाट सामान ल्याउँछु घर बलियो छ त्यसैले म सुरक्षित छु
10: ध्यान दिनुहोस् जीवनमा घर धेरै पटक बनाइदैन त्यसैले मजबुत र बलियो निर्माणको आधार ओम श्री दक्षिण महाकाली क्रसर उद्योग लस्ती पर्वत
9: इन्जिनियरबाट गुणस्तर प्रमाणित अत्याधुनिक मेसिनद्वारा क्रसिङ गरिएका विभिन्न साइजका गिट्टी इट्टा चिप्स डस्ट वासिङ गरेको बालुवा बाटो खन्नका लागि एक्जाभेटर लोडर
10: साथै सम्पूर्ण सामानहरू मेसिनद्वारा लोडिङको पनि व्यवस्था छ कुस्मा बागलुङ र म्याग्दीको संगम पर्वतको लस्तीमा अवस्थित मजबुत भविष्यको विश्वासिलो साथी ओम श्री दक्षिण महाकाली क्रसर उद्योग मालढुङ्गादेखि बेनी जाने बाटोमा लस्ती बजार पर्वत
9: फोन 068-26-144 98-510-16-094 98-476-39-691
3: रेडियो दिदी बहिनी 95.2 मेगाहर्ज

0: sip on ya. Extreme energy drink.
1: Benji, famous Billy. चौधरी एटीएम मोबाइल दे इंटरनेट बैंकिंग गोप्य विवरण आ रही खाई बिले तो माध्यम क्या रे न्यो दे प्रे छली जानकारी री विषया न्यो कॉल पर दिमो समय न्यो ठग दिल खामो बैंगर वे कर्मचारी बीरा न्यो दे प्रे विवरण री विषया बैंक दे नील पर दिमो न्यो ताने सतर्क ताना ठज रे क्या बचेना सिद्धार्थ बैंगर क्या ले जन हितरी जारी संदेश
2: सिद्धार्थ बैंक संबंध सदैव भरी लाई

0: रेडियो रेडियो दीदी बहिनी को समय सूचक हो।
1: अहिले बिहानको ठीक 10 बजे हो।

बीमा को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लेने मौका आज बनो सानिमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अभिकर्ता सानिमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियो।

0: जनहित का लागी नेपाल सरकार महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्रालय को सहयोग रेडियो दीदी बहिनी 95.2 मेगाहर्ज को सहकारी में कुसुमा नगरपालिका पर्वत
1: इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट विशेषज्ञ डाक्टर राजन मणि भंडारी चरक मेमोरियल हॉस्पिटल नागढुंगा पोखरामा
2: इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट विशेषज्ञ डाक्टर राजन मणि भंडारी आइतबार देखि शुक्रवार सम्म साझा 5 बजे पछि अथवा आवश्यकता अनुसार यस चरक मेमोरियल हॉस्पिटल नागढुंगा पोखरामा आउनु हुने भएकोले समयमै आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षण गरी स्वास्थ्य लाभ गर्नुहोला।
1: उपचार सेवाहरू
2: भेरिकोस भेनको लेजर उपचार खुट्टाका सुन्निएका तथा फुलेका नसा लेजर प्रविधि बिना ठूलो चिरफार उपचार करने विधि
1: अल्ट्रासाउंड तथा सिटी गाइडेड बायोप्सी प्रक्रिया मासु को टिश्यू नमूना लिएर रोग जस्ते ट्यूमर पता लगाउने प्रक्रिया
2: रक्तनाली संबंधी रोगहरूको उपचार एंजियोप्लास्टी स्टन्ट राख्ने प्रक्रिया इम्बोलाइजेशन
1: कैंसर उपचार ट्यूमर एब्लेशन तथा विशेष थेरापी सानो चिरफार मिनिमल इन्वेसिव विधि ट्यूमर नष्ट करने उपचार
2: शरीर में जमा भएको पस वा असामान्य तरल पदार्थ निकाल्ने प्रक्रिया
1: पाठीघरको मासु युटेरिन फाइब्राइड एम्बोलाइजेशन पाठीघरमा भएका फाइब्राइड मासुका गाँठालाई शल्यक्रिया नगरी उपचार गर्ने विधि आदि
2: थप जानकारीका लागि चरक मेमोरियल हस्पिटल नागढुङ्गा पोखरा फोन 061582778 582779582780
3: निकट मा दिदी बहिनी, निकट मा दिदी बहिनी, यो रेडियो दिदी बहिनी।

0: हो अब विदेश पठाएको पैसा सीधे खल्ती वालेट में
1: नेपाल को कुनै पनि बैंक खाता में वा 45,000 भन्दा बढी आईएमई काउंटर मार्फत
0: आफन्तको हाथ हाथ में पुर्याउन आईएमई गरौं
1: 25 वर्ष देखि सारा नेपाली को विश्वास आईएमई गरौं।